0: ये है लाइका रेडियो टीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंट इम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-396-3-5757. Greens by Danu. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: None eaten, get ready.
0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. Catch the legend, Ravi Sharma. Every weekday morning at 9 a.m. Leica Radio.

0: ये है लाइका रेडियो। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
3: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
2: Oh, I'm on SIMZY. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
3: And you didn't pay those massive roaming charges?
2: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
4: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the SIMZY app today. SIMZY, your global flow. T's and C's apply.
0: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला, अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखन बोलन बाण।

अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लो लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची का।

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान।

0: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
1: तो अगले इतवार

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ. Miss your favorite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at LeicaRadio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to LeicaRadio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network. The Leica Group. Home of Leica Radio and Leica Gold.
1: Leica Radio. CTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा.
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे CTV HD पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT394.
0: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. This is Leica Radio across the Midlands.

0: ¡Excelsior!
1: Good morning. लाइका रेडियो नेटवर्क पर गोल्डन गीतों का खजाना लाइका गोल्ड सुनते जाना। मंगलवार वर्ष 2026 के मई महीने की 19 तारीख हो गई है आज, थैंक्स टू काजल। शील बी बैक नेक्स्ट वीक, छुट्टियों पर जा रही हैं घूमने के लिए। बहुत काम करती है लड़की, बड़ी मेहनती है, शी डिजर्व्स हॉलीडे ऑफ कोर्स। हमारी शुभकामनाएं काजल तुम्हारे साथ। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ काम काज, एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय द स्पेनिश वेदर, एंजॉय द स्पेनिश एटमोसफियर। और हाँ, वहां सड़क पे लगे संतरों को तोड़ने की कोशिश मत करना, जैसा यहाँ करती रहती हो। मैं स्पेन से लौटा हूँ भाई, और स्पेन में भारत जाने से पहले स्पेन गया था, तो वहाँ का सिस्टम, वहाँ की खासकर सेविल्स, वहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है जिसे काजल एंजॉय करेगी। वहाँ से जो मैं यादें जुटा कर लाया, फोटो लेकर के आया, रिकॉर्डिंग्स लाया, कुछ वो मैंने काजल को सौंप दी। ये सब चीज़ें ज़रूर देखनी है, महसूस करनी है। साहब, आज के प्रोग्राम को मैं शुरू करना चाहता हूँ आप सब श्रोताओं की मेहरबानियों को धन्यवाद देते हुए। भाई, इतने लंबे समय तक कौन किसको झेलता है, कौन शब्दों से खेलता है, और भाई कौन बातों के वो क्या कहते हैं रसगुल्ले फैलता है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। शायरी में कहूँ तो क्या कहूँ, खुल जा डायरी और ढूंढ के ला वो शायरी। जीवन को नई राह दिखाई है आपने, बुझती क्षमा की ज्योत जगाई है आपने। कुछ भी न मेरे पास सिवा उलझनों के था, हर बिगड़ी बात मेरी बनाई।
2: Like a radio. Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.
1: फिर से कह दूं, जीवन को नई राह दिखाई है आपने, बुझती क्षमा की ज्योत जगाई है आपने। कुछ भी ना मेरे पास सिवा उलझनों के था, हर बिगड़ी बात मेरी बनाई है आपने।

0: क्षमा परवाना जलन बुझन। भाई दो गीत हमने बैक टू बैक आपको सुनवा दिए हैं और जिस गीत से प्रोग्राम की शुरुआत हुई दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म आमने सामने, शशि कपूर की फिल्म थी और गीत था मेरे बेचैन दिल को तुमने चैन दिया। भाई ये गीत मैं अपने श्रोताओं के नाम करना चाहता हूँ क्योंकि बहनों भाई एक लंबा रिश्ता रहा है हमारा और आपका और मुझे तो लगता है कि शायद अगर आपका आशीर्वाद रहा तो रिकॉर्ड बन जाएगा क्योंकि 50 बरसों से ब्रॉडकास्टिंग में बने रहना इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन भाई ये 50 बरस तब बनते हैं जब मेरा करियर आकाशवाणी रोहतक से शुरू किया जाए, ऑल इंडिया रेडियो से जहां से शुरुआत की थी। पर साहब फिर भी एक लंबे अरसे तक आपकी सेवा करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नवाजिश करम, शुक्रिया, मेहरबानी, मुझे बख्श दिया आपने जिंदगान, थैंक यू वेरी मच। ये जिंदगी आपकी दी हुई है और भाई ये खुशी और भाई ये प्रसिद्धि ये सब आपकी दी हुई है, थैंक यू। हर प्रेजेंटर मुझे लगता है कि यही सोचता होगा, भाई श्रोताओं के प्रति उसका भाव यही रहता होगा। आइए अब ये दो गीत सुनवाने के बाद, ये जो दूसरा गीत था ये हमने फिल्म रोटी से लिया था, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत शायद राजेश खन्ना और मुमताज पर पिक्चराइज हुआ होगा अगर रोटी फिल्म से है तो। तो साहब अब आपको हम पाउंड का रेट बताएंगे ना, हाँ क्रम में यही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके टुडे हाउ मच दे आर गिविंग फॉर वन पाउंड इन रिटर्न, लेट्स फाइंड आउट।
1: एसबीआई यूके मनी टॉक, सेंड मनी टू इंडिया विद कॉम्पिटिटिव रेट्स विद योनो एसबीआई यूके ऑनलाइन एंड वाया द एसबीआई यूके ब्रांच।
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके से कि भाई रेट अच्छा चल रहा है आप भिजवाइए, आज का रेट आपको बता दें दे आर गिविंग 128.85 रुपीज फॉर वन पाउंड एंड दे से दैट योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग ना ये इतने पैसे आपको दे रहा है 128 रुपए और 85 पैसे। सेंड मनी टू इंडिया वाया एसबीआई योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून, क्योंकि इस दौरान एक एक्स्ट्रा फायदा ये है कि भाई बी इन टू विन ए 75 वाउचर एवरी वीक व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, यस आल्सो ए 1G गोल्ड कॉइन व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। सुना आपने, 1 ग्राम गोल्ड भी दिया जा रहा है जब आप 2000 पाउंड या इससे ज्यादा भिजवाते हैं, 1 ग्राम गोल्ड कॉइन जो है इट इज ऑल्सो ऑन ऑफर, बट remember TNC apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन
5: इन रियल state, location is everything and this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian and furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: 105 shows pura karya pachi have Leicester ma avi rahyu che ek dhamakedar international Gujarati comedy natak
7: Jay's Entertainment line avi rahya che sakhna re jo husband ji
6: Leena Shah ane Samir Shah sate hasya no full dose 28 June People Center Leicester ma be shandar shows bapore 8 vage ane sanje 7 vage tickets booking mate call karo Mr. B07860280655 Mumbai Sandwich Station 07834833249 athwa eventbrite.co.uk सकना रह जो हस्बैंड जी
8: हर क्रंची बाइट में एक खास एथनिक स्वाद हर फ्राई एम शेप में है वो बचपन की याद
9: स्नैक टाइम हंगर को बनाए और भी टेस्टी विद जय मींस फ्राई एम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड यम्मीस्ट फ्लेवर्स लाइक लेमन चिली मिंट मंचूरियन मसाला पेरी पेरी और शेजवान विद बेस्ट क्वालिटी एंड सेम एथनिक टेस्ट
8: जय मींस फ्राई एम्स अवेलेबल एट योर नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
10: Bright Sun Travel is celebrating 40 years of travel and we're giving you the chance to win one of four amazing prizes. You could win a £2,000 holiday voucher, a weekend break for two to Barcelona, a Michelin star dinner for two people, or £400 of Amazon vouchers. Want to enter Bright Sun's 40th anniversary competition? It's easy. Enter before the 30th of June 2026. Just visit brightsun.co.uk/win.
11: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ, ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ .com ਤੇ ਅਲੈਕਸਾ ਪਲੇ ਲਾਈਕਾ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ। ਪੰਜਾਬੀ
1: ਮਾਂ ਕੋ ਬੋਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕਰ ਆ।
2: ਹੋ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕਰ ਆਉਂਗਾ।
3: ਨਾਮ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ, ਅਧਰਮ ਕਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਾਮ ਤਮਾਮ।
1: ਅਰੇ ਕਹਾਂ ਹੋ ਤੁਮ?
4: ਹੋ ਹੋ ਆਨੋ ਆਨੋ।
5: ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਕੇ ਲਿਏ ਚਾਰੋ ਧਾਮ, ਬਾਹਰ ਵੋ ਹੈ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ।
6: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
7: Mere papa ko gulab jamun bahut pasand hai.
8: Order online at poojasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert, Pooja Sweets and Savories.
9: Abhi call kijiye 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
8: Pooja Sweets and Savories.
10: Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
11: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
12: और बहन भाइयों, ये गीत जो हम सुनवाने जा रहे हैं, कंप्यूटर ने स्क्रीन पर ये गीत लगा दिया है और मुझे उलझा दिया है कि ये गीत मैं किसके नाम करूं। भाई, ये गीत जन्मदिन के मौके पर गाया जा सकता है और उनके नाम लगाया जा सकता है जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। और जानते हैं भाई किन का जन्मदिन पड़ता है आज? बाली सग्गू, ये यहाँ के भाई एक जाने माने सिंगर हैं, पर ये दिल्ली में जन्मे थे 1964 में और बर्मिंघम इनका कार्य क्षेत्र रहा। पंजाबी सिंगर बाली सग्गू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। आज के दिन वैसे जन्मे थे साहब भारत के छठे प्रेसिडेंट श्री नीलम संजीव रेड्डी। अब दुनिया में नहीं है वो, लेकिन भाई वो अपने समय में उनके दर्शन करने का मौका मिला था जब वो हमारी यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट बन के आए थे। हेलीकॉप्टर उतरा बिल्कुल ऑडिटोरियम के सामने भाई, और उसके बाद फिर वो अंदर गए। हम अपनी यूनिवर्सिटी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे थे और वो अध्यक्षता करने आए थे और काफी कुछ हुआ था उस समय। बच्चों थोड़े शब्दों में बयान नहीं होगा, लेकिन भाई आर्टिस्ट होने के कारण हम ये ऑडिटोरियम पर अपना हक समझते थे और मंच पर रहते थे ज्यादातर थिएटर में, तो भाई हमने नजदीक से प्रेसिडेंट को देखने सुनने का मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दिया। गिरीश कर्नाड भी आज ही के दिन जन्मे थे 1938 में, और करीब 6 साल पहले उनकी डेथ भी हो चुकी है। पर भाई वो भी एक जाने माने अभिनेता थे और एक राइटर भी थे वो, गिरीश कर्नाड। उनसे मुलाकात यहाँ नेहरू सेंटर में, भारतीय हाई कमीशन का जो सांस्कृतिक केंद्र है, यहाँ वो डायरेक्टर रहे कुछ दिन, तो भाई उनसे वहाँ भेंट हुई। और आज ही के दिन जन्मे थे नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी। भाई वो अपना पक्ष रखते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा प्रकाशित नहीं किया गया, सुनाया नहीं गया लोगों को, लेकिन नाथूराम गोडसे 1910 में जन्मे थे। कट्टर हिंदू विचारधारा से कहते हैं वो प्रेरित थे, और जब गांधी जी एक के बाद एक बहुत सारी रियायतें पाकिस्तान के नाम करते जा रहे थे, काफ़ी उन्होंने फेवर्स की थी। वो चाहते थे कि भाई हिंदुस्तान जो है कोई पैसा ना रोके पाकिस्तान का और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें, तो भाई नाथूराम गोडसे ने उससे नाराज़ होकर के गांधी जी की हत्या की और फिर अंबाला सेंट्रल जेल में 15 नवंबर 1949 में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन भाई जो जन्मदिन का गीत है वो हम नाम करना चाहते हैं अपने दोस्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। ही सेलिब्रेटिंग इस बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ। भाई कुछ ही समय पहले मैंने एक फिल्म में काम किया और उनके बॉस का रोल मुझे मिला, पर फिल्म अभी तक एडिटेड होकर के सिनेमा हॉल में नहीं पहुंची है। पहुंचेगी तो अच्छी विस्तार से बताएंगे। फिलहाल अगर आपके घर परिवार में किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से दिल की गहराई वाला बधाई संदेश आप तक पहुंचे।

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: और भाई खबरों की ओर जाते हुए पता चला है कि डाउनिंग स्ट्रीट में जो वीकली कैबिनेट मीटिंग होती है ना, उसके लिए मिनिस्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं और भाई वो उठापटक अभी भी जारी है। भले ही प्रधानमंत्री स्टावर कह रहे हैं कि मैं अगला इलेक्शन जो है लीड करना चाहता हूं, पर जो विरोधी हैं जो उन्हें हटाने पर तुले हुए हैं उनमें भाई बर्नम इज अ क्लियर फेवरेट फॉर लेबर लीडर पोल ऑफ पार्टी मेंबर सजेस्ट्स। क्या अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं बर्नम? भाई छोड़ते हैं भविष्य पर यह बात, लेकिन आज के दिन के साथ जुड़ने वाली खबरों का जिक्र करते हैं। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। अमेरिका से खबर आ रही है, सैन डिएगो की एक मस्जिद में कल हुई गोलीबारी की घटना जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मस्जिद के बाहर ही 2 किशोर भी एक कार में डेड मिले, मृत पाए गए। कैलिफोर्निया राज्य के क्लेरमांट इलाके में बना ये इस्लामिक सेंटर सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मामले की जांच हेट क्राइम के एंगल से की जा रही है। पुलिस चीफ स्कॉट वॉल ने कहा कि सैन डिएगो इस्लामिक सेंटर में हुई गोलीबारी को नफरत से जुड़ा एक क्राइम माना जा रहा है और इसमें नफरत भरी बातें साफ तौर पर शामिल थी। बता दें कि 17 और 19 साल के 2 नौजवान जो है गाड़ी में जो मृत पाए गए हैं, पास ही मस्जिद के पास खड़ी एक गाड़ी में इनकी डेड बॉडी बरामद हुई। भारत से आने वाली खबरों में, आज मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 87 पैसे और डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। एक हफ्ते के भीतर ये दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई है और इसका असर भी देखने में आ रहा है। भाई हड़ताल का जिक्र हो रहा है, आगे चल के बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि वो ट्रंप जो बार बार धमकी दे रहे थे तो क्या वो फौजी हमला करने वाले हैं ईरान पर? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान पर आज होने वाले यानी वो जो करने वाले थे फौजी हमले को रोक दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया है कि उनसे कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के नेताओं ने हमला रोकने की मांग की थी। ठीक है सर, जो आप कह रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मुझे कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा कि ईरान पर आज मंगलवार को होने वाले हमारे तय निश्चित फौजी हमले को रोक दिया जाए, क्योंकि इस समय गंभीर बातचीत चल रही है। उनका मानना है के नतीजा निकलेगा जंग को रोकने के लिए बात जो है वो गंभीरता का रूप ले रही है। इसका भी रिएक्शन भी आ रहा है जो उन्होंने हमला रोका है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने ट्रंप पर तंज करते हुए कहा कि वो खुद हमले की तारीख तय करते हैं फिर खुद ही उसे रद्द कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ये खुद ही फौजी हमले की तारीख तय करके रद्द करने का इनका ये काम कई बार हो लिया है। इस बेकार उम्मीद में कि ईरानी जनता और अधिकारी हार मान लेंगे, डर जाएंगे, ताकतवर सेना और महान ईरानी जनता के हौसले इन्हें पीछे हटने और हार मानने पर मजबूर कर देंगे, ये उनका रिएक्शन है। भारत की होम मिनिस्ट्री ने सिटीजनशिप लॉ 2009 में अमेंडमेंट करते हुए आज एक नई अधिसूचना जारी की है। इस अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत जाने वाले सिटीजन्स एप्लीकेंट्स के लिए पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी देना जरूरी होगा। सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में नागरिकता पाने के लिए बताना होगा कि इन पड़ोसी देशों का वैध या एक्सपायर्ड पासपोर्ट उनके पास है या नहीं और उसमें क्या लिखा है। और बता दें कि भाई पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ी हैं आज से। तो दिल्ली में कमर्शियल गाड़ियों की ड्राइवर यूनियन ने 21 मई से 23 मई तक 3 दिन की हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए टैक्सी और ऑटो का किराया बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कल सोमवार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखकर अपनी मांगे रखी हैं। उत्तराखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के एक सीनियर नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज निधन हो गया है। 91 वर्ष के खंडूरी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और वे वेंटिलेटर पे थे। खंडूरी ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में अंतिम सांस ली है। बहुत सारे नेता राज्य के और केंद्र के जो है नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं। खंडूरी 2007 से 2009 और उसके बाद 2011 से 2012 तक 2 बार उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे थे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान कहता है कि हमारी फौज पहले से ज्यादा मजबूत है, पहले से ज्यादा तैयार है। और नॉर्वे में भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट और मिनिस्ट्री के अधिकारियों के बीच तीखी नोक झोंक देखी गई। इसके बाद भारत की अपोजिशन पार्टियों का रिएक्शन सामने आ रहा है। वहां भाई ऐसा सवाल पूछ लिया नॉर्वे में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से कि भाई आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। इस पर कहते हैं जो रिस्पॉन्स मिला ना विदेश मंत्रालय का, उससे ना तो नॉर्वे वाले संतुष्ट ना ही भारत की अपोजिशन पार्टियां। और भाई आईपीएल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बता दें कि आईपीएल 2026 में ईशान किशन ने कल 80 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को हैदराबाद को जीत दिला दी। आईपीएल 2026 का 63वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हुआ और उसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटी इनका आगे चलकर हम जिक्र करेंगे। फिलहाल आज के प्रमुख समाचार समाप्त।
4: Laika Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: Very good morning, Laika Radio Network पर आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम रवि शर्मा के साथ। That's my name और मैं दोपहर बाद 1 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। When are you? और अब लौट आइयो संगीत की ओर। आइए सुनते हैं शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजें। सॉन्ग हैज बीन टेकन फ्रॉम द फिल्म जमाने को दिखाना है।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे दौर में। और भाना भाइयों, ये स्वागत हम चिंतन के साथ करते हैं आपका। थॉट फॉर द डे, आज का विचार, आप हैं तैयार सुनने के लिए? बता दें भाई, आज के चिंतन में एक संदेश है, या कहें कि आज का चिंतन प्रभु परमात्मा की ओर से है। वो कहते हैं कि मुझे मानने वालों, मुझे जानने वालों, पहचानने वालों, आपके घर में जो मेरे स्वरूप हैं उनकी कदर करो। माता पिता, ईश्वरीय स्वरूप हमें दुनिया में लाने वाले, हमें दुनियादारी सिखाने वाले माता पिता का सम्मान करो। भाई ये एक ऐसा प्रसंग है आज के चिंतन में, ध्यान से सुनिएगा। वैसे एक त्योहार के साथ जुड़ा है, एक सेलिब्रेशन भी इसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो आज के चिंतन के लिए हम रेडिंग की अनुराधा जी को और भाई सोनू जी को क्रेडिट देते हैं जो उन्होंने याद दिलाए हैं ये प्रसंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आराधना जी आपका भी धन्यवाद, और सोनू जी आपका शुक्रिया। भाई आज के चिंतन में वो कहते हैं कि प्रभु के विट्ठल स्वरूप ने हमें ये संदेश दिया है कि आपके घर में मेरे ही स्वरूप हैं, आपके माता पिता, उन्हें कभी भुलाना नहीं।

दुनिया दिखाई माता पिता ने हमें, दुनियादारी सिखाई माता पिता ने हमें। पहचान ले यही है परमात्मा की सेवा, कर ले पिता की सेवा तो कर ले माँ की सेवा। अब ये संदेश स्वयं भगवान के मुखारविंद से वह प्रकट हुआ कैसे, आज की एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। भगवान विट्ठल का स्वरूप आपने सुना है, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। विट्ठल भगवान से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध एक कथा है पुंडलीक की, जो ये संदेश स्वयं भगवान से प्राप्त करते हैं। माता पिता ईश्वरीय स्वरूप हैं, जो इन्हें ठुकरा कर इनकी सेवा को त्याग कर अगर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं तो प्रभु प्रसन्न नहीं होते। कहा जाता है कि पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा में अत्यंत समर्पित थे, उनकी भक्ति और सेवा से खुश होकर खुद भगवान उनसे मिलने आए। और उस समय पुंडलीक अपनी माता पिता की सेवा में लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने भगवान को कहा विराजमान हो, एक ईंट उनकी तरफ सरका दी, ज्यादा ध्यान नहीं, अपनी सेवा को नहीं छोड़ा कि वेट कीजिए, मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूं। और जो ईंट उन्होंने प्रभु की ओर सरकाई और कहा कि प्रतीक्षा कीजिए, भगवान उसकी मातृपितृ भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उस ईंट पर खड़े होकर के दर्शन देने लगे। अब भाई ईंट पर खड़े भगवान का वो स्वरूप विट्ठल स्वरूप कहलाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में शायद उसको ईंट को ही विठ कहते हैं, शायद विट्ठल या विठोबा कहलाए भगवान। और भाई इस स्वरूप के माध्यम से भगवान ने यह संदेश दिया कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा में समर्पित रहते हैं वे मुझे बहुत प्रिय हैं। अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित विट्ठल मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हर साल आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर वहां विशाल वारी यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें श्रद्धालु पैदल चलकर भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। भजन कीर्तन, संतों के अभंग, सेवा और समानता का संदेश देते हैं, सामूहिक भक्ति का संदेश देते हैं भगवान विट्ठल। विट्ठल भगवान की भक्ति से कई महान संत जुड़े हैं, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, और इन्होंने भी भाई इसी बात का प्रचार प्रसार अपने भजनों, अपने संदेशों, अपने व्याख्यानों के माध्यम से किया। तो भाइयों भाइयों, इस संदर्भ में आज हमारे स्टूडियो में एक हमारे बड़े प्यारे और न्यारे मेहमान हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। आप सुनिएगा और इस पर्व के विषय में जो बड़ी धूमधाम से महाराष्ट्र के पंढरपुर से चल करके लंदन पहुंच चुका है और भाई बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है, तो आइए उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। पहले थोड़ा ये सुन लीजिएगा। जय विट्ठल भगवान की, जय रुक्मणी माता की।

0: जिसके रूप है अपार, जिसके नाम है अनेक, जिसका वेद भी नहीं पायो पार, उस ईश्वर के अनेक नाम है, उनमें एक नाम है विठ्ठल। भगवान श्री कृष्ण का ही अवतार माने जाते हैं। और भाई आइए हम आपको मिलवाते हैं अब अपने खास मेहमान से, जिनका नाम है अनिल खेडकर। और बड़े कारनामे किए इन्होंने, भगवान की पादुकाएं लेकर के ये भारत से और यहाँ यूके तक आए, लेकिन प्लेन से नहीं तो फिर कार से। डॉक्टर अनिल खेडकर, स्वागत है आपका। राम कृष्ण हरी। आपकी आवाज थोड़ा सा सामने माइक के ये जो घुमा लीजिए थोड़ा सा, हाँ अपनी तरफ। अब बोलिए,
1: नमस्ते राम कृष्ण हरी।
0: ये जो रायका लिखा ना, थोड़ा ये अपनी तरफ कर लीजिए। हाँ अब बोलिए,
1: नमस्ते राम कृष्ण हरी।
0: हाँ लाउड बड़ो बद, सब तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। आप तो जैसे भागीरथ जी गंगा को लेकर के धरती पर आए थे, आप भगवान को वैसे तो सर्वव्यापक है, प्रभु ओमनी प्रेजेंट है, कण कण में है, जन जन में, लेकिन उनकी पादुकाएं लेकर के इतनी लंबी यात्रा की आपने भारत से, पंडरपुर से लेके चले।
1: करेक्ट। सो पिछले साल 14 अप्रैल को हम लोगों ने पंडरपुर से पादुकाएं लेके,
0: पादुकाएं बता दो भाई आपको, जो चरण पादुकाएं खड़ाव होती है ना, जैसे आप घर में स्लीपर पहनते हैं तो भगवान खड़ाव पहनते हैं, और उनकी वो लकड़ी की बनी हुई या किसी विशेष उसकी बनी हुई, तो उनको पादुका कहते हैं, पद में पहनी जाने वाले, पद पैरों को कहते हैं। तो पादुकाएं लेकर के वहां से चले।
1: करेक्ट। सो जी ये वारी है, महाराष्ट्र का वारी जो संस्कृति है या कल्चर है वो 750 साल पुराना है
0: जी,
1: जहाँ पे आषाढ़ महीने में लोग पैदल निकलते हैं पंडरपुर की तरफ।
0: अच्छा।
1: भगवान पांडुरंग और रुक्मिणी माता के दर्शन के लिए। तो सोचा कि क्यों ना हम भगवान विठ्ठल और रुक्मिणी को लंदन लेके जाए।
0: क्या बात है।
1: सो भारत के बाहर पहला विठ्ठल रुक्मिणी जी का टेम्पल बनाना है
0: जी।
1: तो विठ्ठल भगवान जो कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते हैं, विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं
0: जी,
1: तो वो वारी का जो परंपरा है, कल्चर है, उसको मिमिक करने के लिए हमने सोचा क्यों ना हम जो चरण पादुका है विठ्ठल भगवान और रुक्मिणी माता के, बाय रोड लेके चले। तो जो हिस्ट्री है 750 साल
0: बाय रोड लेकर के चले वहां से, उस पुराने इतिहास को जीवंत करने के लिए या यूके में लोगों को दर्शन कराने के लिए।
1: करेक्ट। और ना जस्ट यूके के, लेकिन पूरे जो जर्नी था भारत से
0: लेकर देश रास्ते में पड़े,
1: सारे देश जितने थे, तो टोटल 22 देशों में से यह हमारी जर्नी हुई बाय रोड। सो जितने भी विठ्ठल भक्त थे
0: जी,
1: यूरोप में हो गया, एशिया में हो गया, तो उनको कनेक्ट करने का काम ये ग्लोबल वारी ने किया है।
0: क्या बात।
1: अभी तक वो इंडिया के लिए सीमित था, लेकिन अब ये ट्रूली ग्लोबल वारी हो गई है
0: भाई। एक बात तो है, ये भारतीय लोग जहां भी जाते हैं अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी स्पिरिचुअलिटी, ये कि हमारी जो सबसे बड़ी दौलत है वो तो यही है कि हम स्पिरिचुअल माध्यम से, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से लोगों में प्रेम और सद्भावना का संदेश पहुंचाते हैं, ले जाते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें यही सिखाया है। प्रेम के तो देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान विठ्ठल। तो कितने दिन लगे?
1: सो ये जर्नी हमने शुरू किया था 14 अप्रैल 2025 को
0: जी,
1: हम लोग यूके पहुंचे 22 जून 2025, मतलब ये टोटल 70 दिन का पूरा जर्नी था।
0: सड़क के रास्ते से देशों से गुजरते हुए सब लोगों को विठ्ठल भगवान का संदेश सुनवाते, उनकी चरण पादुकाओं का दर्शन कराते हुए।
1: करेक्ट।
0: पहुंचे। तो
1: ये पूरा आप सोच सकते हो, इंडिया से नेपाल, फिर नेपाल से तिब्बत, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, देन उसके बाद रशिया, रशिया के बाद जॉर्जिया, टर्की, फिर सर्बिया, बल्गेरिया।
0: क्या बात है।
1: क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, फ्रांस, और लास्ट में हम लोग यूके में टच डाउन किया 22nd of June को।
0: 22nd of June लास्ट ईयर आप पहुंचे भाई। डॉक्टर साहब एक बात तो है कि इस तरह की यात्रा करते हुए काफी नियमों का ध्यान रखना पड़ता है, वो व्रत, उपवास, पवित्रता, सात्विकता, जहां जहां से आप गुजरते हैं तो आप भोजन ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो इन सब उनको पालन करते हुए मर्यादाओं का आपने ये यात्रा पूर्ण की, बधाई हो बहुत बहुत।
1: धन्यवाद।
0: कोई कठिनाई आई?
1: कठिनाई तो बहुत सारी थी, जैसे कि जब हमने यात्रा शुरू की थी तो 2 वॉर्स चल रहे थे, रशिया और यूक्रेन।
0: अरे बाप रे। हाँ वो तो वो, हाँ वो, हाँ।
1: अनफॉर्चुनेटली इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा अनबनी चल,
0: थोड़ा सा चल रहा था तनाव।
1: हाँ। टाइम हम लोग बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे थे
0: जी,
1: तो लेकिन भगवान की कृपा थी, भगवान खुद हमारे साथ चल रहे थे, तो मुझे आपके दर्शकों के लिए बताने के लिए खुशी हो रही है, लाइका रेडियो के दर्शकों के लिए, कि भगवान की कृपा से मेरे जो ये पादुका थे, हमने जो बनाए थे, ये सिल्वर के थे।
0: ओके, चांदी के बने?
1: चांदी के थे, लगभग 3-3.5 किलो के थे।
0: अरे वाह।
1: जब हम लोग बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, हर एक कंट्री की बॉर्डर क्रॉसिंग पे हमारा इमिग्रेशन होता है, जैसे एयरपोर्ट पे होता है
0: जी,
1: किसी भी बॉर्डर पे मुझे किसी ने पूछा भी नहीं कि ये क्या है।
0: हाँ, ये क्या है भाई, इस पर ड्यूटी दी है कि नहीं, इसमें ये तो वो तो धातु के रूप में देखते हैं, फिर उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती, समझाना, लेकिन कहीं कुछ
1: नहीं हुआ,
0: रुकावट नहीं है, मुश्किल।
1: चाइना का बॉर्डर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, वहाँ पे हमारी पूरी गाड़ी एक्सरे के थ्रू स्कैन हुई, हम लोग का पूरा सामान एक्सरे थ्रू स्कैन हुआ, लेकिन मुझे लगता है ये भगवान की महिमा है कि कहीं पे भी किसी ने पूछा नहीं कि ये क्या है।
0: भाई भगवान स्वयं चाहते हैं, मुझे यूके पहुंचना है, मुझे यूरोप में लोगों को दर्शन देने हैं अपनी पादुकाओं के माध्यम से। क्या बात है।
1: और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि ये पूरी जर्नी में मैंने सारे एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स रहते हैं
0: जी,
1: जैसे इंडिया में गर्मी थी, तिब्बत में बर्फबारी हो रही थी,
0: क्या बात,
1: चाइना में जाने के बाद मैं वहाँ पे डेजर्ट में था, उसके बाद रशिया में पूरा जंगल के थ्रू जा रहा था रास्ता, विंटर समर रेनी धूप छाव पूरा जितना भी था।
0: और आपकी गाड़ी तो, क्योंकि आप भारत से चले हैं, तो वो लेफ्ट हैंड ड्राइव होगी ना, फिर वो कहीं राइट हैंड ड्राइव, कहीं लेफ्ट हैंड।
1: मतलब आपको बताते हुए खुशी है कि भारत, नेपाल और यूके छोड़ के सारे कंट्रीज में
0: राइट हैंड ड्राइव
1: था। तो मतलब अपनी गाड़ी जो थी इंडिया पासिंग वाली फॉर्च्यूनर के थ्रू आया मैं, पूरा जर्नी अदर वे राउंड था, लेकिन जहां से स्टार्ट किया और जहां पे एंड किया, बस वही पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला ड्राइव था।
0: तो अब आपका जो आयोजन यहाँ हो रहा है यूके में जून में, और बड़ी तैयारियां चल रही हैं उसकी, तो उसके विषय में बताइए थोड़ा डॉक्टर साहब।
1: जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग अभी भारत के बाहर पहला विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल यूके में पहले वाला बना रहे, तो उसके लिए एक फंड रेजिंग इवेंट कर रहे हैं हम लोग, वाद्य महोत्सव, जिसके थ्रू 100 से ज्यादा ढोल ताशा पतक, आपने सुना होगा कि पर्टिकुलरली मुंबई और महाराष्ट्र में
0: उधर ढोल ताशा खूब बजते हैं,
1: मूवीज में देखते हैं, नासिक ढोल भी बोलते हैं।
0: अगर आपने कभी गणपति उत्सव भी देखा होगा, उसमें भी वो शामिल रहते हैं भाई, महाराष्ट्र के ये वाद्य यंत्र है, वाद्य उत्सव, वाद्य कहते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट्स को, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और वो बहुत बड़ी संख्या में,
1: करेक्ट,
0: जब वो इकट्ठे बजाते हैं, वो उनका तालमेल और वो जो है जो संगीत उत्पन्न होता है, सचमुच बहनों भाइयों एंजॉय करने के काबिल होता है जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सो एक यही प्रयत्न है कि जो अपना कल्चर है, जहाँ पे ये संगीत का उत्सव है, क्यों ना हम लोग एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे सबके सामने लेके आए। तो उसी के लिए हम लोग 6 जून रॉयल विंडसर रेस कोर्स पे सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक ये वाद्य महोत्सव कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हो, 100 से ज्यादा ढोल, 80 से ज्यादा ताशा और 200 से अधिक वादक,
0: वाह, बजाने वाले। हाँ,
1: आप परफॉर्म कर रहे हो, आप सोच सकते हो जो माहौल होगा, यहाँ से जो आवाज गूंजेगा वो भारत की धरती तक जाएगा।
0: बिल्कुल पहुंचेगी भारत की धरती तक भाई, चर्चा पहुंचेगी, संदेश पहुंचेगा, और फिर वो फोटोज वीडियोज और वो पूरे विश्व में फैलेंगे वो। तो ये बहुत बड़ा आयोजन रॉयल
1: विंडसर
0: रेस कोर्स, ये विंडसर में ही है, मेडन हेड रोड पे,
1: कहां विंडसर रेस कोर्स के पास ही 2 माइल पे है, मेडन हेड रोड पे।
0: अच्छा, और वहाँ पर पूरी व्यवस्था, प्रसाद की, जलपान की,
1: मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 15 से भी अधिक भिन्न भिन्न खाद्य संस्कृति वाले हमारे यहाँ पे स्टॉल्स है।
0: क्या बात है।
1: तो आपके दर्शकों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, संगीत के साथ ये खाद्य महोत्सव भी हो सकता है, आपको अलग अलग
0: इतनी वैरायटी होगी फूड की भाई भगवान का, और ये फूड नहीं होगा, प्रसाद होगा, क्योंकि ईश्वर को भोग लगा करके जब भोजन खाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्रसाद होता है।
1: यस, और तो, उसके साथ मुझे एक हिस्टोरिकल ग्लोबल वारी की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये ग्लोबल वारी हम पंढरपुर से लेके आए थे, लेकिन लेके आने के बाद जितने सारे लोग हम लोग को जुड़ गए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ये वारी कंटिन्यू करिए,
0: ये वारी, ये यात्रा, ये भाई जो है अनुष्ठान, ये यज्ञ जो है अब पूरे विश्व में जाना चाहिए। तो फिर वो बाई रोड ही होगा, जब समुद्र आएगा तो समुद्र में,
1: समुद्र एक ही जगह पे है, खाली इंग्लैंड से फ्रांस तक। अभी यहाँ से पादुका आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर जा रही है, पंढरपुर से पांडुरंग से मिलन करके वापस यूके में आएगी लोगों के दर्शन के लिए। तो 6 जून को ऑफिशियली ये पादुका पंढरपुर के लिए निकलेंगी बाय रोड। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, ये वारी का जो सक्सेस है पूरे यूरोप और एशिया के जितने भी कंट्रीज के थ्रू हम लोग गए, उनको कनेक्ट किया है। जैसे एक माला को हम लोग एक धागे में कनेक्ट करते हैं, तो अभी हम लोग ये रिले वारी कर रहे हैं, तो इंग्लैंड वाले फ्रांस को पादुकाएं दे रहे हैं, फ्रांस वाले बेल्जियम को।
0: ओके ओके, तो फिर वो आगे से इस तरह से ना हर देश में आपको सहयोग मिलेगा, वहाँ के लोकल जो आस्थावान है, जो श्रद्धालु हैं, वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। अच्छा, ये 6 जून वाले आयोजन के लिए, क्योंकि ये फंड रेजिंग, आपने मंदिर बनाना है तो नेचुरली धन की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए कुछ आपने शुल्क कोई टिकट रखा है?
1: यस, ये बेसिक टिकट में हम लोग सबको इनवाइट कर रहे हैं
0: जी,
1: तो इसके लिए अब टिकट बहुत ही
0: रीजनेबल हो। दक्षिणा जैसे आप दान करते हैं, दान पेटी में डालते हैं, यूं समझिए कि आप उसी तरह का, अदरवाइज कोई इसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है इस आयोजन का,
1: कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके लिए आप SVRT UK,
0: हाँ,
1: श्री विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल UK, या फिर SVRTUK.org, ये वेबसाइट पे जाके आप टिकट बुक कर सकते हो। सबके लिए इनवाइटेड है, आप आ जाइए, संगीत महोत्सव, खाद्य महोत्सव का आनंद उठाइए।
0: SVRTUK.org,
1: हाँ,
0: क्या बात है। तो ये कोई फोन नंबर तो नहीं है? बस ये काफी है मेरा ख्याल, वेबसाइट जो है, और इस पर संपर्क करेंगे, लोग अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। तो है ना भाइयों, जरूर पहुंचिएगा, मेरी तो कोशिश रहेगी मैं जरूर पहुंचूं 6 जून का। मैं अभी देखता हूं अपना डायरी में, और 11 से 4 बजे तक है, अगर आप देर से भी पहुंचे, दोपहर में या 4 से पहले भी थोड़ी देर पहले पहुंचे, तो वहां पर जो है इस कार्यक्रम का, इस क्या कहें कि स्पिरिचुअल फंक्शन का आनंद ले सकते हैं। इस सात्विक कार्यक्रम को आप सत्संग की तरह से, कीर्तन भजन की तरह से, आरती पूजा की तरह से आप इसका आनंद कर सकते हैं, ले सकते हैं जी।
1: और मुझे जहाँ आपको बताते हुए खुशी हो रही है, 6 जून जो मराठा एम्पायर के राजा थे छत्रपति शिवाजी महाराज,
0: हाँ,
1: उनका राज्याभिषेक दिन है, तो उस दिन शिवाजी महाराज जी का कोरोनेशन हुआ था 1675 में रायगढ़ पे।
0: तो ये तो और ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गई इस दिन की है, भगवान विट्ठल स्वयं आकर के शिवाजी को राजतिलक करेंगे। यहाँ जितने भी शिवासुर हमले के खेल खेला करते थे कि शिवाजी को पहचानना बड़ा मुश्किल था मुगलों के लिए, तो क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को शिवा मानता था कि हम उनके स्वरूप उनके अनुयायी है, तो उनको शिवाजी को ढूंढना होता था, तो उसमें हम वो खेल खेलते थे, तो हर व्यक्ति का जो कहता मैं शिवाजी, वो उसके पीछे लग लेते, फिर दूसरा कहता मैं शिवाजी, ऐसे हाथ लगा के, तो उनको कंफ्यूज करके, तो हर मराठा, हर भारतीय जुल्म से लड़ने के लिए, अत्याचार से, पाप से, यू नो, उसका मुकाबला करने के लिए शिवा का रूप धारण करता, महाराणा प्रताप बनता है, तो योद्धा बनता है, भक्त भी बनता है, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त करके, वो कहते एक 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तो हमारे महापुरुषों ने हमें जीने का ढंग सिखाया है, और वो आप आगे बढ़ा रहे हैं भक्ति के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, और प्रचार के माध्यम से। अनिल जी, कोई और विशेष बात आप बताना चाहते हैं तो बताइए।
1: तो नहीं, आप हम सब लोग जुड़ जाते हैं, हमारा कल्चर, हमारा हेरिटेज जो है ग्लोबल लेवल पे सबके सामने लेके आने के लिए, जो धरोहर हम लोग लेके चले हैं भारत से पूरी दुनिया में, हमारा डंका जो है लोगों को दिखाने के लिए, आइए जुड़ते हैं हम सब लोग एक साथ, विट्ठल भगवान और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जयघोष है, आके सब लोग मिलके करते हैं 6 जून को।
0: थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनिल खेडकर भाई, उस उत्सव की जानकारी दे रहे थे जो 6 जून को होना है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे श्रोता बढ़ चढ़ करके इस आयोजन में भाग लेंगे। थैंक यू डॉक्टर अनिल खेडकर, आपके आयोजन के लिए हमारी शुभकामनाएं।

0: आज का चिंतन, आज का विचार भाई विशेष बन गया। 6 जून को होने वाले आयोजन में जो है आप जरूर पहुंचिएगा, तो इसका जो विस्तृत स्वरूप है वो आपको देखने को मिलेगा। माता पिता की सेवा की जो है वो चर्चा हुई, और भगवान विट्ठल का संदेश भाई अपने घर में अपने माता पिता को वही दर्जा दीजिएगा। ईश्वर प्रसन्न होते हैं जब आप उन्हें सम्मान से सेवा देते हैं। तो बहन भाइयों, आपको याद दिला दूं कि चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके भाई याद दिला रहे हैं कि रेट अभी भी अच्छे चल रहे हैं। आज वो जो भाव दे रहे हैं, टुडे द रेट इज 128.85 रुपीज फॉर 1 pound. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be into win a 75 pounds voucher every week when you send over 1000 pounds. इतना अच्छा रेट, तो भाई ज्यादा मात्रा में पैसे भिजवाएंगे तो प्राइज और बड़ा हो जाएगा। Also a 1 gold coin. Yes, 1 gram gold coin when sending over 2000 pounds. TNC apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio.
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
6: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
5: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
6: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
5: For sponsorship and details, call 07803 633 926.

कैसी हालत होती है, अकेलापन अच्छा लगता है, शीशे के सामने खड़ी होकर मुस्कुराती है, अपने आप से बातें करती है, महकी महकी बहकी बहकी, क्या हो गया मैडम आपको?

0: करना कुछ और होता है और ये कुछ और ही करती हैं। करवटें बदलते रात गुजरती है। तो मैडम सोती कब हो, नींद पूरी कैसे करती हो?
1: ऑफिस में जाके सोती हूँ ना।
2: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai,

आ गया हैदराबादी। दे दो परमिशन, मानेगा नहीं बिना परमिशन के। क्या चाहिए?

0: 1980 की फिल्म आशा का गीत आप सुन रहे थे। और भाई बैक टू बैक संगीत में जो पहला गीत हमने सुनवाया देता जाई जो रे, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में वो गीत था फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से, अमिताभ बच्चन और गोविंदा, याद होंगे आपको। फिल्म के रिलीज पर भाई इनसे मंच पर मुलाकात हुई थी, स्टेज पर गोविंदा भी थे, मैं भी था और अमिताभ जी भी थे। और भाई वो फोटो मैंने बड़ी संजो कर रखी हुई है उस दौरान की, उस मौके की। तो साहब ये तीसरा दौर शुरू हो चुका है और पहले आपको पाउंड का रेट बताते हैं और उसके बाद लाते हैं खींच के बढ़िया बढ़िया गीत और क्रिकेट की दुनिया से। और हाँ, आर्टिस्ट ऑफ द वीक से कोई गीत, कौन है आर्टिस्ट सप्ताह के, भूल तो नहीं गए ना, अभी याद दिलाते हैं आपको।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI UK याद दिला रहे हैं, अच्छा रेट चल रहा है, भिजवाइए पैसे। योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू कितना, 128.85 रुपए, 128.85 रुपीज मैक्सिमम। और साथ में भाई ये भी जान लीजिए कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ 75 pounds वाउचर एवरी वीक। एंड व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds तब ये मिलेंगे 75 pounds। और अदरवाइज भाई अगर उससे भी ज्यादा भेजते हैं तो ऑल्सो 1 gram गोल्ड क्वाइन व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। TNC अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
3: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
2: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
3: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
2: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
3: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
2: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
4: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
5: Mum, I'm outside.
6: Yes, literally just landed.
7: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
6: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
7: And you didn't pay those massive roaming charges?
6: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
8: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's are apply.
9: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Siddhayu, now available in Falcon Cash and Carry, Leicester and Nottingham. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
10: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
9: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian Summer is back.
12: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
9: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
12: Or sales at leicamedia.co.uk.
13: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
14: अभी ना यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है क्या तुम मेरे साथ ये फैसला मेरा था भुगत तुम रही हो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ
15: अगर हम साथ हैं
14: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे
16: खुशियों को लगी वक्त की नजर कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर
17: ये रिश्ता क्या कहलाता है मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस अवेलेबल ऑन स्काई 705 वर्जिन मीडिया 803 EE 392 एंड अप टीवी प्रेजेंटेड बाय travelup.com पावर्ड बाय नैटको फूड्स
13: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24-7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: और भैनो भाइयो इस सप्ताह के कलाकार यानी आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं शमशीर राज कपूर यानी शम्मी कपूर उछल कूद वाले गीत तो आपने बहुत सुने होंगे उनके भाई लेकिन उन पर पिक्चराइज एक सीरियस गीत जिसमें दर्द है वियोग है याद है और फरियाद है कौन सा गीत है वो प्रेमिका के प्रति समर्पण

0: हसरत जयपुरी की शब्द रचना, शंकर जयकिशन का संगीत और भाई शम्मी कपूर की फिल्म, साथ में कौन थी, राजश्री। उस जमाने में भाई मुमताज वो टॉप हीरोइंस में नहीं आती थी, सहायक अभिनेत्री वो भी थी इस फिल्म में, लेकिन मेन मुख्य रोल जो है वो राजश्री ने निभाया था। और भाना भाई वो विलेन के रूप में थी शायद प्राण फिल्म में, और उनका नाम था, क्या नाम था उनका, रवि। प्राण साहब भाई जबरदस्त अभिनेता थे, और आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा मेरे कार्यक्रम में, बहुत जबरदस्त उन्हें विलेन बनाए, कॉमेडियन बनाए, या फिर फिल्म में मुख्य रोल उन्हें दे दे, छाए रहते थे।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: और भाई गीत संगीत सुन बैठे हुए दो चार काम की बातें भी बताते चले आपको। एक तो ये कि भाई लाइका रेडियो नेटवर्क इज द कन्फर्म्ड पार्टनर ऑफ द कुमार सानू लाइव कॉन्सर्ट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे 25th ऑफ मई। दिन नजदीक आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी टिकटों का इंतजाम कर चुके होंगे। इसके अलावा भाई लाइका रेडियो नेटवर्क ऑल्सो कन्फर्म्ड पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागा सन। डिटेल्स एट laikaradio.com।
3: ये है लाइका रेडियो।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
2: '70 में आई थी फिल्म हम जोली। कौन थे हीरो? जितेंद्र होंगे? कौन थे भाई? मुझे क्या पता, पुरानी फिल्मों के बारे में मेरी जानकारी इतनी पुख्ता कैसे हो सकती है।
5: द वन एंड ओनली वन रवि शर्मा ऑन योर नंबर वन रेडियो।

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: जितेंद्र और सबरीना चंदावरकर की फिल्म का गीत आपने सुना, और अब साउथ हॉल ट्रेवल वालों का ये संदेश कि मेक दिस समर मेमोरेबल विद साउथ हॉल ट्रेवल, एक्सप्लोर बीच ब्रेक्स, सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स, होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 ईयर्स एंड विनर्स ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड. विजिट साउथ हॉल ट्रेवल और कॉल 0208 574 8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
2: We hit
3: Leica Radio.
4: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
2: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
2: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
2: Exclusive radio partner Leica Radio.
5: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
6: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
5: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
6: गारंटेड.
5: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
6: फोन 0208574 8410.
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.

0: Disha Basmati Rice, available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: माँ के हाथ की चाय हो या दोस्तों के साथ गॉसिप,
4: टेबल पे सिर्फ एक हीरो, जयमिन फूड्स का ऑल न्यू पोटैटो चिप्स,
3: मसालेदार मसाला, टैंगी टोमेटो, सॉल्टेड क्लासिक और थोड़ा स्पाइसी मैक्सिकन चिली फ्लेवर, ऑल इन जयमिन पोटैटो चिप्स।
4: जयमिन फूड्स प्रेजेंट्स पोटैटो चिप्स, डीसी स्वैग इन एवरी बैग।
5: मंत्रा हॉलीडेज विशेस यू एंड योर फैमिली अ हॉलीडे सीजन फिल्ड विद जॉय, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। एज यू सेलिब्रेट, स्टार्ट प्लानिंग योर नेक्स्ट एडवेंचर विद अस। विजिट www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
6: Mantra Holidays.
7: What's your travel mantra?
8: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: Ye hai Leica Gold 2.

0: लिखित में ले लो भैया, स्टैंप ड्यूटी लगा के पे करके। आजकल मुंह से बोली बात पर भरोसा नहीं है, और लिखित पर भरोसा कर लेते हैं।
1: मैंने प्यार किया ये दिल तुझे दिया,
0: एक जमाना था जब भाई जुबान से ही सारी बातें होती थी, क्योंकि वो शादी ब्याह में कहते हैं कि जुबान से बेटा बेटी पराए होते हैं, यानी लड़की का रिश्ता। हमारे यहाँ एंगेजमेंट को वाकदान कहते हैं, कि मुंह से बोलकर ही कहता है पिता, उसको कहते हैं

0: Vodafone mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: और भाई रेट्स बताते हो, बता दूं आपको कि रेट्स बड़े गर्मा गर्म है, लेकिन भाई जो ये स्टूडियो है ना हमारा, ऐसा लगता है जैसे किसी पहाड़ की बर्फीली गुफा में बैठ के शो कर रहे हैं। एयर कंडीशन इतना ठंडा कर रहा है, पर शर्मा जी तो ठंड से क्या डरना, भाई जवान आदमी है, हमें तो ठंड लगती नहीं है, लगती है तो हम बताते नहीं है। भाई करेंसी रेट्स सुनिए, लफाई वाले दे रहे हैं एक पाउंड के बदले भारतीय मुद्रा में 129.54 रुपीस, पाकिस्तानी 373.5 रुपीस, श्रीलंकन 443.84 और बांग्लादेशी टके 164.64, अफगानी 84.02।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LIKA Radio.
1: Gold is sold at the rate of 108.97 pounds per gram.
0: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116

0: अभी जाने की बात मत करना, अभी 10 से ज्यादा मिनट्स बाकी हैं। कम से कम 2 गीत प्रोग्राम में ठूसने की कोशिश करेंगे हम।
1: आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सुन रहे हैं मनोरंजन प्रोग्राम आपके अपने प्रेजेंटर रवि शर्मा के साथ।
2: कजरा लगा के, गजरा सजा के,

0: गुड आफ्टरनून, ये आपका लाइका रेडियो नेटवर्क है और लाइका रेडियो नेटवर्क के लाइका गोल्ड पर इस वक्त लंदन और आसपास के इलाकों में और लेस्टर में सुना जा रहा है ये प्रोग्राम। मैं हूँ सरिता सबरवाल, सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मभट्ट। आप कौन हैं, अपना परिचय दे सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए हमारे स्टूडियो तक पहुँच सकते हैं। मुझे बताइए सबसे पहले कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहे हैं, सेहतमंद रहे हैं। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूं और करती रहूंगी। इफ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ यू आर फीलिंग बिट डाउन, कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज टू लिव, लाइफ इज टू एंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए गाने तो चुन चुन कर लाई है सरिता सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। प्रोग्राम के इस आवर में सोचा आज एक टॉपिक नहीं होना चाहिए, एक थीम नहीं होना चाहिए। गाना बड़ा प्यारा था, पहला ही गीत, दिल जिगर नज़र क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। ओ मेरी जाने जा, तू है मेरा जहां, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूँ। दिल का क्या कसूर फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को। इस फिल्म की हीरोइन थी दिव्या भारती और हीरो थी पृथ्वी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। बहुत प्यारा गीत था और मेरे बहुत से साथियों को पसंद आया। कितने सारे मैसेजेस ऑलरेडी मुझ तक पहुँच गए, थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि इतना प्यार करते हैं, इतने प्यार से मुझे आप मैसेजेस लिखते, थैंक यू सो मच। और ये थे पहले दो गाने। दूसरा गीत जो था फिल्म पुकार का था, जिसमें दो आवाजें आपने सुनी, किशोर कुमार एंड आर डी बर्मन साहब की। अब दूसरे गीत में क्या था, जाने जिगर, दिल जिगर, तो मैंने जिगर वर्ड चुना और जिगर पर ये गाना आप तक पहुंचा दिया। और अब अगला गीत है नजर पे, तो नजर पे मैंने एक बहुत ही प्यारा सा गीत चुना है नाइट इन लंदन फिल्म से। कौन सा गीत हो सकता है, जरा सोचिए सोचिए, तब तक जरा ये काम कर लें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भी अगर SBI UK के जरिए पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आज योर वन पाउंड इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू अप टू 128 rupees and 85 paisa। इट डिपेंड्स कितना अमाउंट आप ट्रांसफर करा रहे हैं। सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000 and also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply, so der mat kijiyega.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gem in Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert. Gem in Foods. Bilkul ghar jaisa swad aur ghar jaisi hi baat. Available at Asian stores near you.
3: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All atoll protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2020. 26. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.

मैं जल्दी से आपको चॉइस दे रही हूँ, दोनों गीतों में से डिसाइड नहीं कर पा रही सरिता कौन सा गीत प्ले करे, क्या कहने माशाल्लाह या फिर क्या से क्या हो गया, ए और बी, क्या कहने माशाल्लाह और क्या से क्या हो गया, बी। जल्दी से अपने वोट्स दीजिएगा।

0: Good Track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भी अब ज्यादा वोट्स जिस गीत को मिले हैं वो तो फिल्म गाइड का गीत है, लेकिन कुछ मेरे साथियों ने सुनना चाहा वो वाला गीत जी चाहता है फिल्म से, पर वो किसी दिन यानी नेक्स्ट आवर में ज़रूर मैं ट्राई करूँगी प्ले कर दूँ। लेकिन आइए सुनते हैं अब ये गाना जो आप तक पहुँचा रहे हैं कोका नूडल्स वाले।
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: Right, babe. बहुत जबरदस्त गीत था एस टी बर्मन साहब का संगीत, रवि साहब की आवाज़, और जिन्होंने इस गीत की फरमाइश की थी उन सबका मैंने थैंक्स कर दिए है व्हाट्सएप के जरिए। दिल जिगर नज़र क्या है, क्या भी हो गया, मैं तो अब मैं पर क्या कौन सा गाना हो सकता है, सोचिए, सुना दें, चलिए सुनते हैं।
2: Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Like

0: कितनी प्यारी फीलिंग्स है ना, कितने प्यारे एहसास है। तू मिल जाए तो और क्या चाहिए, कुछ नहीं, तेरा प्यार सबसे पहले। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। और बड़े दिनों बाद हमने प्रोग्राम में शामिल किया, अनोखी अदा फिल्म से ये गीत था। 1973 में आई थी ये फिल्म। आपके मैसेजेस बराबर मिल रहे हैं, थैंक यू। आई विल गिव अ शाउट आउट इन फ्यू मिनट्स।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees 129.64, Pakistani rupees 373.69, Sri Lankan rupee 444.1 and Bangladeshi taka 164.73, Afghan is 84.18. Like

0: is Leica Radio.
1: राइट गोल्ड का रेट भी आपको बता दें कि इस वक्त गोल्ड का रेट मार्केट में क्या चल रहा है 108 pounds and 97 pence पर ग्राम.
0: Ram Jewelers specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. Leica Radio, finalist at the Radio India Cricket Score Update. Brought to you by Remitly. Send money fast to India with Remitly's great rates and low fees. Remitly. Proud to be the official partner of England Cricket.
1: भी आज का मैच है राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में. जैसे ही मैच शुरू होगा हम आपको अपडेट देंगे.
0: India Cricket Score Updates were brought to you by Remitly, where more of your money makes it home with competitive rates and low fees. Download the Remitly app today. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: और जल्दी से कुछ एक मेरे साथियों के नाम ले लो. महेंद्र बरजारिया जी हैरो में सुन रहे हैं, मानसी जी, अर्जुन जी, निर्मत एंड किरत, मुकेश जसवंतीलाल एंड सहर जी, उल्लास इन टोरंटो, मृदु जी, निर्मला जी, जैस्मिन, नैना शाह, शोभना, प्रीत्या, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत से और मैसेजेस हैं लेकिन वक्त नहीं है कि अब मैं आप तक वो मैसेजेस आपके नाम में शामिल कर पाऊँ. नेक्स्ट आवर में भी आपका साथ रहेगा ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ. नेक्स्ट आवर में गिरीश कन्नड़ जी को हम याद करेंगे. एंड अब कुछ मैसेजेस और मैसेजेस के उस पार दो गाने.
2: Gem In Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone. Lister, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी. मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ $24.99.
2: हमजा समोसास 3 for 10.
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p.
2: सुहाना मसालास 2 for 150. रामदेव नमकीन 2 for 149.
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179. हाइंस केचप 279.
2: केसर मैंगो पल 149. फुल मखाना 245. फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
2: Stocks last.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: ट्रांसफर मनी होम एंड टर्न एवरी ट्रांसफर इन to a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the new Bingley Hall in Birmingham,
10: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
9: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
10: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
9: For sponsorship and details, call 07803-633-926.
11: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5.

0: What a beautiful song from the film Har Jai, 1981 की फिल्म थी. And तेरे लिए yes हो गया और अब जान रह गई है और जान पर गीत आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार. जैस्मिन थैंक यू सो मच. भारती जी जी आप सुन रही है, पम्मी जी इस्लाव में आप, हाजरा जी थैंक यू, एंड साइद हंसा बोरा जी, आनंद तोमर जी, किशोर पांड्या जी. आपने कहा किशोर पांड्या जी कि मेरी मास्टर शेफ वाइफ नैना, नैना को हेलो कह दें और नैना के नाम एक गाना भी, तो नैना के नाम एक गाना भी आ रहा है, लास्ट वाला जो गाना होगा इस आवर का. एंड भारती जी थैंक यू, एजाज इन चशम, सुरेश टैंक, मितुल पटेल, विजय गुरदुरी एंड सुमिला मुंग, महेंद्र बरजारिया जी, आप सभी का तहदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. और अब गीत की तरफ बढ़ते हैं.
1: Cranking out the biggest hits for the capital. This is Laika.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। अब ये तो नहीं मैं ये कहूंगी कि इन गीतों के जरिए हमने याद किया गिरीश कन्नड़ जी को। गिरीश कन्नड़ जी ने इन फिल्मों में काम जरूर किया था, लेकिन आप जानते हैं कि उन पर बहुत ही कम 8 फिल्मों में या कन्नड़ तमिल तेलुगु फिल्मों में जरूर गाने पिक्चराइज हुए होंगे, लेकिन हिंदी फिल्मों में कोई खास नहीं। हो सकता है मंथन में कोई गीत हो, लेकिन ये फिल्में जिनके गीत मैं सुना रही हूँ इनमें उन्होंने काम जरूर किया था। गिरीश कन्नड़ चाइना गेट में भी थे, 1998 में ये फिल्म आई थी, उसमें उनका रोल था सुंदर राजन का, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर बने थे। एंड 1980 की फिल्म जिसका गीत मैंने आपको सुनवाया आशा, उसमें उनका रोल जो था वो दीपक का रोल था, लेकिन उन पर कोई गाना पिक्चराइज नहीं हुआ, पर हम उनके बारे में बातचीत करेंगे जरूर। तो चाइना गेट भी आपने ज़रूर देखी होगी, उर्मिला मातोंडकर के काम को काफ़ी पसंद किया गया था। पर एक बात बता दूं कि जब क्रेडिट मिलता है तो उर्मिला मातोंडकर का नाम सबसे नीचे आया था। ओम प्रकाश, नसीरुद्दीन शाह, अमरीश पुरी, गिरीश कन्नड़ जी, मुकेश तिवारी, ममता कुलकर्णी और सारे आर्टिस्ट, और उसके बाद एंड में उर्मिला मातोंडकर। मे बी अल्फाबेटिकली, नो अल्फाबेटिकली भी नहीं था, एनीवे। और अनु मलिक का था संगीत और आपने गीत सुना अलका याग्निक, शंकर महादेवन एंड विनोद राठौर की आवाज़ों में। दूसरा गीत रफ़ी साहब की बुलंद आवाज़ में, फिल्म आशा से मैंने चुना था, 1980 की फिल्म थी। गिरीश कन्नड़ जी, आज के दिन इन 1938 में इनका जन्म हुआ था और 10th जून 2019 को ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। ही वॉज एन इंडियन प्ले राइटर, एक्टर, फिल्म डायरेक्टर, कन्नड़ राइटर, वर्कड इन कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड मराठी फिल्म्स। 4 डेकेड्स तक इन्होंने काम किया है। ही फॉर 4 डेकेड्स गिरीश कन्नड़ कंपोज्ड प्लेस, ऑफन यूजिंग हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी टू टैकल कंटेम्प्रेरी इश्यूज, एंड ही ट्रांसलेटेड हिज प्लेस इनटू इंग्लिश एंड रिसीव्ड अक्लेम। हिज प्लेस हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सम इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायरेक्टेड बाय डायरेक्टर्स लाइक इब्राहिम अलज़िकी एंड प्रसन्ना, अरविंद गौर, सत्यदेव दुबे एंड विजया मेहता एंड अमाल अलाना। He was active in the world of Indian cinema, working as an actor, director and screenwriter in Hindi and in Kannada cinema, and has earned awards as well. और भी इनके बारे में बातें करेंगे, थोड़ा बहुत जो जानकारी मेरे पास है मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन साथ साथ दूसरे काम भी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: चलिए भाई, अगर SBI UK के जरिए आज पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो योर 1 pound इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू up to 128 rupees and 85 paisas. Send money to India via SBI YONO app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. And terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gemin Foods sponsors Gold Afternoons. From dal bhat, pav bhaji and biryani to namkeen, khakra, chikki, potato chips, mango pulp, pani puri and sweets. Everything delicious. Everything for everyone.
3: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
4: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी, मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 lbs सिर्फ 24.99,
3: हमजा समोसास 3 for 10,
4: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p,
3: सुहाना मसालास 2 for 150, रामदेव नमकीन 2 for 149,
4: हीरा ग्राम फ्लावर 179, हाइंस केचप 279,
3: केसर मैंगो पल 149, फुल मखाना 245, फाल्कन कैश एंड कैरी
4: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN.
3: Stocks last. fast. Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply. City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
8: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
3: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
8: Also explore 2026 cruises
3: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
9: Mantra Holiday wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203 773 633. Now APTA bonded.
3: Mantra Holidays.
10: What's your travel mantra?
11: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester. With grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
12: Yeah, like a go.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई गीत आपने सुना यशुदास की आवाज़ में, बहुत प्यारा गीत था फ्रॉम द फिल्म स्वामी, 1977 की फिल्म थी और इस फिल्म में काम किया था शबाना आज़मी, गिरीश कन्नड़ एंड विक्रम एंड दीपक कुमार ने। इस फिल्म का कौन सा गीत गिरीश जी पर पिक्चराइज हुआ था मैं नहीं जानती, बिकॉज आई हैवन्ट सीन द फिल्म। फिल्म वॉज मेड डायरेक्टेड बाय बासु चैटर्जी एंड जया चक्रवर्ती ने प्रोड्यूस किया था। शबाना आज़मी, विक्रम एंड गिरीश कन्नड़ थे इस फिल्म में। उत्पल दत्त थे, हेमा मालिनी एंड धर्मेंद्र ने गेस्ट अपियरेंस एक साथ दी थी इस फिल्म में। म्यूजिक था राजेश रोशन जी का एंड द फिल्म वॉज शॉट इन लोकेशन इन दहिसर मुंबई में। और इस फिल्म को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, यस 25th फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर बासु चैटर्जी, बेस्ट एक्ट्रेस शबाना आज़मी एंड शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को बेस्ट स्टोरी के लिए अवार्ड मिला था। नॉमिनेशंस में थे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन एंड बेस्ट फिल्म जिनकी थी उन्हें भी, एंड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर आयना बालम, इस गीत के लिए इनका नाम नॉमिनेट हुआ था यशुदास जी का। और आज के प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं कुछ एक गीत जिन फिल्मों में गिरीश कन्नड़ जी ने काम किया। इनकी एक फिल्म थी मंथन, मंथन में एक ही गाना था इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, श्याम बेनेगल जी ने बनाई थी, गिरीश कन्नड़ थे साथ में, थी स्मिता पाटिल एंड नसीरुद्दीन शाह और वनराज भाटिया ने संगीत दिया था इस फिल्म के गीतों का। वेल एक ही गाना था और वो गीत प्रीति सागर ने गाया था, मेरा गाम काथीपत समथिंग लाइक दैट। सो उस फिल्म को भी अवार्ड मिले थे, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था श्याम बेनेगल जी को बेस्ट स्क्रीन प्ले का, विजय तेंदुलकर जी को एंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल आर्टिस्ट प्रीति सागर को उस गीत के लिए अवार्ड मिला था। और ऐसी थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई एम नॉट गोइंग इन टू डेप्थ, बट ही गिरीश कन्नड़ वॉज एक्टिव इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन सिनेमा वर्किंग एज एन एक्टर, डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर इन हिंदी एंड कन्नड़ सिनेमा एंड ही हैज़ अर्न अवार्ड्स एज वेल। ही वॉज conferred Padma Shri and Padma Bhushan by the Government of India and won 4 Film Fare Awards, of which 3 are Film Fare Award for Best Director Kannad and the 4th one was Film Fare Best Screenplay Award, and he was a presenter for a weekly science magazine program called Turning Point that aired on Doordarshan in 1991. बहुत सी फिल्मों में काम किया है इन्होंने, कुछ एक फिल्मों का और मैं नाम ज़रूर दूंगी, लेकिन पहले ज़रा ये सुन लें अगला गीत जो मैंने चुना है किस फिल्म से, मनपसंद। इस फिल्म में भी इन्होंने काम किया था और इस फिल्म में मनपसंद में इनका क्या रोल था, ही वॉज काशीनाथ इन दिस फिल्म, पर गाना तो ऑब्वियसली इन पर कोई पिक्चराइज नहीं हुआ होगा, पर जो गीत मैं शामिल कर रही हूँ आप पसंद करेंगे।
0: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
2: किशोरदा की आवाज है, अच्छा लगेगा। बहुत सारे मेरे साथी मैसेजेस भेज रहे हैं गीत

0: क्या बात है, किशोरदा की आवाज में गाया हुआ गीत आप तक पहुंचाया।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: और सरिता जल्दी से आपको याद दिला रही है कि लाइका रेडियो नेटवर्क इज द कंफर्म्ड पार्टनर ऑफ द कुमार सानू लाइव कॉन्सर्ट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अल्बर्ट हॉल ऑन बैंक हॉलीडे मंडे 25th ऑफ मे। सो टिकट्स नहीं लिए तो ले लीजिएगा। एंड लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th एंड 16th ऑफ ऑगस्ट एट एबी पार्क, ऑल्सो द ब्रैडफर्ड सिटी मेला ऑन 1st एंड 2nd ऑफ ऑगस्ट एट सिटी पार्क एट Centenary Square.
1: Leica Radio. Leica Radio, finalist at the Radio Academy Arias 2026.
0: और भाई यस, आपको ये भी बताना है कि किशोरदा के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग केतन, इंद्राणी, संजय एंड द 515 बैंड, एंड इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में है। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका गोल्ड रेडियो।
1: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
0: जी हाँ, ये भी बता दें आपको जल्दी से कि इस वीक का टाइटल है इंडिया वीक शोकेस, एंड अनुज राडिया पेश कर रहे हैं, इसे होस्ट कर रहे हैं, और लाइका रेडियो नेटवर्क आर ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स ऑफ इंडिया वीक फ्रॉम 26th मे टिल 31st ऑफ मे। एंड पुराने एपिसोड्स अगर आप देखना चाहते हैं विल्स एंड प्रोपेट पर, वेडिंग एंड बियॉन्ड पर, तो आप देख सकते हैं ऑन लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट विच इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Leica Radio.
2: Gold Afternoons.
3: Gold Afternoons.
2: Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
4: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner Leica Radio.
6: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Har crunchy bite mein ek khas ethnic swaad. Har fryam shape mein hai wo bachpan ki yaad.
10: Snack time hunger ko banaye aur be tasty with Jaimin's Fryams in different shapes and yummiest flavors like lemon chili mint, manchurian, masala, peri peri aur shizwan with best quality and same ethnic taste.
9: Jaimin Fryams. Available at your nearest ethnic grocery stores.
11: Fly more, pay less with Leica Fly. Grab cheap flights to India, the Philippines, Africa and Pakistan. Book now, pay later. All ATOL protected. Call 0207-132-0700 or visit leicafly.com. Leica Fly. Fly more, pay less.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: फिल्म जमाना से सुन रहे हैं। इस गीत को गीत के साथ बोलने की माफी चाहती हूँ, लेकिन आई हैव टू वाइंड अप। गिरीश कन्नड़ जी को याद किया हमने इस आवर में। पद्मश्री मिला था इन्हें 1974 में, पद्म भूषण इन 1992। और हिंदी फिल्मों के लिए वैसे कन्नड़ एंड साउथ की फिल्मों के लिए बहुत से अवार्ड मिले, और हिंदी फिल्मों की बात करें तो फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले इन्हें मिला था गोधुली फिल्म के लिए, एंड ही वॉज नॉमिनेटेड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन आशा, एंड नॉमिनेटेड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन तेरी कसम। और उम्मीद करती हूँ जो भी गीत मैंने शामिल किए प्रोग्राम में गिरीश जी की फिल्मों के, चाहे वो उन पर पिक्चराइज हुए या नहीं हुए, पर आपने पसंद किए, आपने इंजॉय किए। आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिलते रहे, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के नेक्स्ट आवर में भी बहुत से प्यारे प्यारे गीत होंगे, इसलिए कहीं जाने का नहीं, आपने मेरा साथ देना है इसी तरह से टिल 4 o'clock। 4 बजे सैंडी शाह आएंगे और 7 बजे आती हैं यहाँ लाइक अ गोल्ड पर हमारी चुलबुली अश्विनी जी, हुई सिटिंग इन फॉर अनीसा नासिर। तो साथ इसी तरह से देते रहिएगा, और जिनके नाम मैं नहीं ले पाई हूँ प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्या करूँ, वक्त की कमी होती है, पर मैंने आप सभी के मैसेज व्हाट्सएप मैसेजेस का व्हाट्सएप से ही जवाब ज़रूर दिया है। सुनते रहिए, साथ इसी तरह से दीजिएगा, मैं न्यूज़ के उस पार आप ही का इंतज़ार करूँगी। सो कहीं जाने का नहीं है, यहीं रहें।
1: Across the Midlands, on DAB Digital Radio, this is Leica Radio, a part of the Leica Radio Network.
2: The top stories this hour. HS2 could cost more than £100 billion, which would make it more expensive than the NASA mission, which sent 4 astronauts to the moon. Trains will run slower than planned and may not be ready until 2039. Transport Secretary Heidi Alexander's called the delays and costs obscene, but claims cancelling wouldn't be worth it. Christian Walmars, a railway historian.
3: Why can other countries build a high-speed line in just a few years, and they can build it largely on time and on budget? You know, this was supposed to open by now, and we now discover it's at least 10 years late and at least 3 times over budget.
2: Up to 20 companies and 57 individuals could face criminal charges over the 2017 Grenfell Tower fire. A decision will be made next June. Andy Burnham's been selected to represent Labour in a by-election in Greater Manchester. Reform's candidate in Makerfield is plumber Robert Kenyon. MSPs are voting for Scotland's First Minister. John Swinney's SNP fell short of the 65 seats needed for a majority following the Holyrood elections. A 4th case of meningitis has been confirmed, linked to an outbreak in Reading. 1 college student's died. Southampton's Ross Stewart, 43-year-old goalkeeper Craig Gordon and teenager Finlay Curtis have been named in Scotland's World Cup squad. Steve Clarke's drawn up his final list of 26 players who'll head out to this summer's tournament. The manager says he feels for those who've missed out.
4: There's a number of players across the campaign who've had fantastic seasons who will also be disappointed that they're not in the squad, and I fully respect their disappointment, but they also have to understand that I'm the head coach. I can only pick 26. I work the way I work. That's not going to change.
2: And the King and Queen are on an unannounced visit to Belfast. They've been touring parts of the Titanic Quarter on a trip to celebrate culture, music and creativity. From Sky News, I'm Faye De Silva.
1: Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: Right, by this time, temperature 17 degrees Celsius in London and in surrounding areas, and also in Leicester. And low, it will be 12 degrees Celsius, and dono jagah hai thundery showers and moderate breeze. So, aapke dil ka mausam kaisa hai? Batana chahte hain to WhatsApp karke mujhe bata sakte hain. Us mausam ko hamesha theek tak rakhiyega.
1: Special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand. Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. This is Leica Radio across the Midlands. Ali Brambat.
0: This is Sarita Sabharwal sitting in for Bali Brahmbhatt. It's 3 minutes after 3 o'clock. I'm with you till 4 o'clock. आइए सबसे पहले सुनते हैं back to back दो गाने और उसके बाद फिर ढूंढेंगे हम पुराने गीत मधुबाला जी के गाने.
5: Like a radio. Like a radio.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Like a Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Like a Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Spring into the sunshine on Like a Radio Network.

0: प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में हैं हम इस 14 मिनट्स आफ्टर 3 o'clock. गुड आफ्टरनून. इफ यू हैव जस्ट ज्वाइन मी तो आपने मिस किए 2 घंटे का प्रोग्राम. यस, इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप वक्त पर आया करें. आजकल मैं बाली जी का प्रोग्राम पेश कर रही हूँ तो आप चाहती हूँ कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरे साथ ही रहें. जो मेरे साथी अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ उनके नाम मैं थोड़ा सा मैंशन करूँगी. सीमा हियाती जी कहती हैं कि सरिता जी आई वॉज सरप्राइज टू हेयर योर वॉइस हा हा हा बट लव टू बी विद यू टिल माई फिनिश. ओके, टिल इट फिनिशेज. ओके, थैंक यू सीमा हियाती, थैंक यू. एंड विमल रायन जी, हंसा वोरा जी चशम से हम शुरू से हमारे साथ हैं. रजिंदर सिंह कालरा जी एंड इंतशाब, मीनाक्षी जी, दिनेश पोपर जी, हाना, मनु, जगतार जी, आप वैंकूवर में सुन रहे हैं. उल्लास, आप टोरंटो में सुन रही हैं. विजय गुजरी, निर्मला जी, देशराज बसन जी, फरीदा गुलाम अली, नरेंद्र पंचाल, भारती डीडी, जैस्मिन सईद, पमी जी इंसलाव, मुकेश जी, किशोर पांड्या जी, विनी जी, विनोद एंड वरुण हाजरा, आनंद तोमर. बहुत लंबी लिस्ट है, थोड़े बाद में ले लूँ ना, कोई बात नहीं. चलिए, ना भी लिए तो भी कोई बात नहीं ना, आपको पता है कि मैं आपके साथ साथ हूँ. तो सुनते रहिए, साथ देते रहिए. 2 गीत सुने बैक टू बैक आपने. दिल तेरा आशिक फिल्म से, 1993 की फिल्म थी, कुमार सानू और अलका की आवाज़ें. एंड दूसरे गीत में किशोरदा की आवाज़ और फिल्म का नाम था आशिक हूँ बहारों का.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: भाई, अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं आज इंडिया में कहीं भी, तो योर £1 इन ब्रिटिश स्टर्लिंग कैन गेट यू एट दिस मोमेंट 128 rupees and 85 paisa. सेंड मनी टू इंडिया बाय SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन अ £75 वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर £1,000 एंड ऑल्सो 1 gram गोल्ड क्वाइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर £2,000. सो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, पर आप इसका फायदा जरूर उठाइए.
1: UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is Leica Radio.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: Asiana, in association with ZTV and Leica Radio, brings you the Asiana Lifestyle Show on Sunday the 31st of May at the New Bingley Hall in Birmingham,
4: where weddings, fashion, jewellery, beauty and lifestyle come to life under one roof.
3: Meet the UK's top brands, discover exclusive offers and get ready to be inspired and entertained in style.
4: Register now for free tickets at asianalifestyleshow.com.
3: For sponsorship and details, call 07803 633 926.
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: मनोज जी, आपने लिखा है कि सारे के सारे गाने ही फील गुड ट्रैक हैं. थैंक यू एवर सो मच अमर जी. आपने भी अभी अभी ज्वाइन किया. अनीता, थैंक यू. नीलम, आप भी अभी अभी आए हैं. थैंक यू. विजय गुदरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी तरह से सुनते रहिएगा. एंड राइट, आपका नाम कहाँ है? समीना फ्रॉम मैनचेस्टर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. सुनते रहिए. और मुकेश जी की आवाज़ में दो गीत मुझे बहुत पसंद हैं. दोनों गीत मैं प्रोग्राम में शामिल कर रही हूँ. पहले ये वाला गाना जो है वो कोका नूडल्स वालों की जानिब से आप तक पहुँचने वाला है, फ्रॉम द फिल्म मर्यादा. कौन सा गाना है याद कीजिए.
0: Laika. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मधुबाला जावेरी, मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें शामिल थी इस गीत में। और इसी के साथ मैं सरिता माइक्रोफोन के इस तरफ से अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगली मुलाकात कल होगी, जी हाँ, 11 बजे के समाचारों के बाद आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। आई विल बी सिटिंग इन फॉर बाली ब्रह्मभट्ट। और मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह, उनका स्वागत कीजिए। और बाद में 7 बजे आएंगी अश्विनी। हैव ए लवली एंड सुपर्ब डे, बाय फॉर नाउ।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. The Leica Radio Network is now also streaming live on the Nation Player app. Download on iOS and Android mobile devices.
2: Good afternoons with Bali Brahmbhat. Bali Brahmbhat is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pearl, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी। मुस्तफा बासमती XXL राइस 40 LBS सिर्फ 34.99।
2: हमजा समोसास 3 for 10।
3: टॉप स्टार फ्राइड अनियंस ओनली 99p।
2: सुहाना मसालास 2 for 150। रामदेव नमकीन 2 for 149।
3: हीरा ग्राम फ्लावर 179। हाइंस केचप 279।
2: केसर मैंगो पल 149। फुल मखाना 245। फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट्स हिल LE54UN।
2: While stocks last.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208890880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजल for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel, at all protected.
10: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame-grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri, Pepe-licious.
11: Mantra Holidays wishes you and your family a holiday season filled with joy, laughter and unforgettable moments. As you celebrate, start planning your next adventure with us. Visit www.mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. APTA bonded.
12: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Lester Mellor is back with exclusive radio partner Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.

0: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
1: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
2: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
3: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. That's 02037736333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
5: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से.
6: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE392.
7: Presented by South Hall Travel, powered by Tata Tea Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.

0: Basmati Rice. Disha Basmati Rice available on special offers at Falcon Cash & Carry, Syston Street, Leicester and Nottingham. Hurry while stocks last.
1: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
2: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
1: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
2: Or sales at leicamedia.co.uk.
3: Leicester Mellor is back with exclusive radio partner, Leica Radio. August 15th and 16th at Abbey Park, Leicester.
4: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
5: जगदात्री,
4: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है।
5: माला ले आना, लाइया जी।
4: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है।
6: टीम, गेट रेडी फॉर द एक्शन।
4: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री। देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394।
7: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
8: इन रियल एस्टेट, लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
7: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
8: लोकेटेड in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
3: New hits on Leica Radio.

0: दूर लेस्टर पर ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 Belgrave Road, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में।
1: ये है लाइका

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
2: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
3: खुद से भी ज्यादा।
1: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
3: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
1: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
4: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. Imagine X Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
0: Listen back to your favorite shows by logging on to laikaradio.com and selecting Midlands or the mobile app. Next, Radio Wally's Roller Coaster with Radio Wally on Laika Radio Midlands. London, Midlands, Manchester. This is the Laika Radio Network.

0: ये एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90s सॉन्ग्स नॉनस्टॉप।
2: शादी तुझे से हो मेरी, चाहे शादी के दिन मर जाऊं।
3: हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा।
1: Listen to Laika Radio 90s on Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
4: This is the Laika Radio Network, broadcasting across the UK. A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Laika.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी।
1: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए।
2: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
3: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
1: अरे कहाँ हो तुम?
4: हो आलो आलो।
5: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
6: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
7: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: taking you back to 1997. सात तरंग के सपने आप तो हमेशा मेरे साथ ही चलते रहे, तो आपको मैं क्या ही बोलू. Such a beautiful track, isn't it? Vasanthi ji, lots of love going out to you as well. But looking at the time, we need to squeeze in one last big track because we need to see what's happening around the globe.
1: The Radio Wally roller coaster flies back into the 90s.
0: And it's a roller coaster, so of course we're going to have to pick up the pace. Taking you across to 1992. Kumar Da Ki Awaaz ke saath Sapna Mukherjee from the movie Yaadgar. हो जाता है कैसे प्यार. अभी पहले दो गाने पहले हम वो लवेरिया वाली बीमारी की बात कर रहे थे. अभी मैं पूछ रही हूँ कि अगर प्यार हो जाता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, वगैरह वगैरह वगैरह.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: well, मैं तो बैंड बाजा पार्टी करने जा रही हूँ. Fit for a completely different reason. I'm super happy. Latte Gunas. Champions 2026, baby. With that, along with the chart number one, I'm leaving you with one of my favorite numbers of 1998. So until tomorrow, good night. God bless. Stay safe. Stay warm. Stay hydrated. Aur kal tak, mucho pyar.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Time to sit back and slide into Radio Wally's Lazy Lounge.
3: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें. Like our radio sales on 0116-471-0697 या email करें sales@lykamedia.co.uk.
4: The wait is now over. The King of Melody. Kumar Sanu live in concert. For one night only, Bank Holiday Monday, the 25th of May at the iconic Royal Albert Hall.
5: With full symphony orchestra by RG Academy of Music.
4: Presented by Pepe's and powered by Berico Food Distribution.
5: With TV partner ZTV, hospitality partner Splendid Hospitality Group and Ragasan.
4: Tickets available now at Venue Box Office or Ticketmaster. Brought to you by Rock On Music, UK Events Life, Tutors Valley Education, Embryo Events and PRC Direct. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड. मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
9: Packed for the trip? Gifts? Passport?
10: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
9: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
10: Simzy?
9: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
11: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
12: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
13: Abira, यहाँ से मेरा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है. क्या तुम मेरे साथ? ये फैसला मेरा था. भुगत तुम रही हो. मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. कुछ नहीं कर पा रहा हूँ.
14: अगर हम साथ हैं
13: तो जिंदगी की हर मुश्किल को हरा देंगे.
15: खुशियों को लगी वक्त की नजर. कैसा होगा अबीरा अरमान का नया सफर?
16: ये रिश्ता क्या कहलाता है? मंडे टू संडे 7 PM ऑन स्टार प्लस. अवेलेबल ऑन स्काई 705, वर्जिन मीडिया 803, EE 392 एंड TV. प्रेजेंटेड बाय travelup.com, पावर्ड बाय नेटको फूड्स.
17: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. That's 02037736333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Leica Radio Network. Broadcasting across the UK with Asian stations. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Next, the biggest Asian love songs with Love Sound on Leica Radio Midlands. This week's number one on the Leica Radio Network Chart Show. Tune in every Saturday at 4 PM with Niraj across the Leica Radio Network.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
2: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
5: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039-63-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. An Indian summer is back.
1: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
8: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
1: Or sales at leicamedia.co.uk.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: जिसको सबकी खुशी का है ख्याल, क्या है उसके दिल का हाल? मिलिए अनुपमा से.
8: Anupama, Monday to Sunday at 8:30 PM, only on Utsav Plus. Utsav Plus, Sky Channel 705, Veggie Media 803 and EE392.
10: Presented by South Hall Travel, powered by Data T Premium and Wellman and Wellwoman by Vita Biotics.
11: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सबके लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 01163325100. एग जंक्शन, जो वेम्बली और किंग्सवे में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
0: This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK.
12: Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at leicamedia.co.uk. Bollywood romantic hits throughout the night.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां। मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
6: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
7: खुद से भी ज्यादा।
5: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
7: जो बात मेरे दिल में है वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
5: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई क्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394।
0: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. The sounds of love across the Midlands. This is Leica Radio.